इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तो हाडे ले कर देने बंसल लॉयर्स। तो हाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 4229058 और विजिट bansallawyers.com.au। बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाडे नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो दियो मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तो हाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड डायमंड बुलियन सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।
2: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप। टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
3: एक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आप बच्चों के जीवन को आकार दे सकते हैं। आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। अपने करियर को संवारें। अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत।
0: सोना चाहिदा,
4: परोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
5: ऑन रोड्स ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय ले। हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल। BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990, BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990 ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900। एक खास ऑफर 1 अगस्त तो 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करन वाले ले है। डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक। हो जानकारी ले आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी। BYD, on roads, on us.

0: स्पोर्ट्स ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय लिए। हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल। BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990। BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990। ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900। एक खास ऑफर 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करने वाले लिए है। डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक। हो जानकारी ले आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी। BYD ऑन रोड्स ऑन अस। कंडीशन अप्लाई।
1: सोना चाहिदा,
2: भरोसा चाहिदा,
1: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ। रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493536042।
3: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
6: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
7: फिर लवाइए कित्थों?
6: सन करंट वालिया कोलों। 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
5: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
8: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर, वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2Fold लेंडिंग।
9: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।

किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Milton।

0: रोड्स ऑनर कैंपेन सिर्फ सीमित समय ले हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990 BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990 ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900 एक खास ऑफर 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करने वाले लिए है डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक हो जानकारी ले आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी BYD ऑन रोड्स ऑन अस कंडीशन अप्लाई ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है तो टेंशन क्यों टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन हर लोन ले 40 तो वद लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील लो क्रेडिट स्कोर वेलकम कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लेंडिंग
1: एक अजेही दुनिया जिथे जिराफ हुन सब तो उच्चे जानवर नहीं हैं जूज विक्टोरिया मान नाल चिड़ियाघर विच डायनासोर्स नु पेश करता है अपने सारे मनपसंद जानवरां दे विच 3 चिड़ियाघरां विच 60 तो वध असली आकार ते डायनासोर्स दे नाल एक पुरातन इतिहासिक मुहिम लई तैयार होवो मेलबर्न चिड़ियाघर वेरी बी ओपन रेंज चिड़ियाघर अते हिल्सविल सेंचुरी दे विलखण बारी वातावरण विच एनिमेट्रॉनिक जीवां नू जिउंदे जागदे वेखो चिड़ियाघर विखे डायनासोर्स सिर्फ सीमित समय लई हन आज ही अपनी मुहिम दी योजना बनाओ
2: किचन दा स्टाइल डल लगदा बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया हुन टेंशन खत्म करो आ गया ZJ स्टोन मेसन फाड़े घर नु बनाए एकदम क्लासी असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton.

0: 4763-7004 WhatsApp 2 4 Landing. Ki chahida Australia da visa lona ja visa layi mashwara chahida mil juga. Sidde aao Garewal Visa Solutions Australia vich har tarah diyan visa loda layi ik bharose yogna jo study visa skilled visa employer sponsored visa dama parent partner te visitor visa vich deal karde ne hun ek call karo pritinder Garewal nu 0496 0545 4596 Garewal Visa Solutions.com.au te jao. Aao thoda koi hal kariye vyah khushi ya kisi bhi khaas mauke layi jewelry honi chahiye. Khaas tunna jewelers leke aayi ne latest gold, diamond, bullion, silver te bridal collection. Har style te har occasion layi genuine jewelry, genuine pricing te vadhiya customer service de naal. Gold jewelry te fast loan facility vi available. Visit karo 5/150 Palmers Road, Truganina ate 347 non-stairs street, Dandenong. Jewelers, Parose di Nishani. Nenu apni navi dukan layi premium 3D illuminated signage di urgent lod si. Quick signage ne in-house design, printing te professional installation sirf 4 to 5 dinan vich puri kar ditti. Glowing shop front to vehicle wrap tak. Brand puri street vich sab ton vakh chamak uthya. Victoria te South Australia vich 12 saalan to signage leaders. Apni business nu chamkao. Call 1300-151-6166. Quicksignage.com.au.
1: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन, पार्टी करनु बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने हैं डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओवी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल. कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन.

0: सोना चाहिदा
1: परोसा चाहिदा
0: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493536042
2: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले याद रखो टायर फोर्स जिना को लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सोमर्टन रोड कैंपलफील्ड कॉल 0398-6655 और विजिट tireforce.com.au
3: वाओ तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है मेनू भी दस दे सीक्रेट
4: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार ना ता इस विच ऑयल ना ही कोई कलर हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है
3: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो
5: बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान बिजली दा बिल घट टेंशन भी घट
6: फिर लवाइए कित्थों
5: सन करंट वालिया कोलों 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी
3: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au बिजनेस चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने ATO ऑडिट्स टैक्स डिस्प्यूट्स ATO डेट्स बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा आज ही विजिट करो sebipartners.au सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स
2: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नु उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर सामान वाजिब रेट ते ले सकदे हो पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0403-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच
7: हांजी हांजी ओए हांजी हांजी
8: हांजी रेडियो
9: मियां ये कामयाब होटल है यहाँ नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती तुम आते जाओ हम सोचते जाएंगे

हो रहे धड़ाधड़ निर्माण ते उन्हां दे विरोध दे नाल जुड़ी हुई। लगभग 1 लाख आस्ट्रेलियन लोग ऐसे हैगे ने जिहड़े इन्हां हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स दे खिलाफ अपना इतराज सरकारां तक दर्ज करवा रहे ने। तुसी किन्नियां क पटीशनां दे विच शमूलियत कीती है या तुसी इन्हां नूं किन्ना क जरूरी समझदे हो, इह सुनेहे भेज सकदे हो। पर आस्ट्रेलिया जिहड़ा कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस दा हब बनना चाहुंदा है, मौजूदा सरकार दी रणनीतियां इह ने कि सैकड़िया की गिनती दे विच डेटा सेंटर्स खोल दिते जान। 36 ऐसिया पटीशनां इस वक्त change.org ते चल रही ने जिहड़ियां इन्हां नवे डेटा सेंटर्स दे निर्माण दे उत्ते इतराज जता रही ने। खास तौर दे उत्ते डेटा सेंटर्स की तरफ तो रिन्यूएबल एनर्जी दे सोर्सिस दा इस्तेमाल किया जाना। अगे भी बड़ी बार दस्या है कि डेटा सेंटर्स कई हजार मेगावाट बिजली जिहड़ी उसकी खपत करते हैं। बल्कि पिछले हफ्ते के दरम्यान एक खबर यह भी साझी की थी कि साल 2036 तक NSW ते विक्टोरिया दे विच जिन्हें भी घर जिन्हें भी व्यापारक अदारे जिनी बिजली कंज्यूम अज की तरीक दे विच कर रहे ने 2036 तक डेटा सेंटर इन्नी बिजली कंज्यूम कर लग जाएंगे आस्ट्रेलिया दे विच। हालांकि उदों तक डेटा सेंटर की गिनती भी बढ़ जाएगी, पर एक सब तो वड्डी पटीशन तो 23,000 सिग्नेचर वाली है। खास गल यह है कि इस पटीशन नू 16 साल की एक छोटी लड़की बेला मार्क जिहड़ी कि हाई स्कूल की स्टूडेंट है सिडनी दे पिंबल सबब दी, उसने प्राइम मिनिस्टर दे ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 23,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਗਰੂਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਹ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਸ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ChatGPT इस वातावरण नूं नहीं बचा सकेगी। कहा जाता है कि डेटा सेंटर्स दे विच एक बड़े पैमाने दे उत्ते पानी ते बिजली दा इस्तेमाल हुंदा है, और ये पानी ते बिजली दीआं लोड़ां जिहड़ियां ने आम इंसान दीआं लोड़ां दे विचों घट करके वरतियां जाणगीआं, यानी कि किसी ना किसी तरीके दे नाल साडे तुहाडे उत्ते इह असर पैणगे। पर मौजूदा सरकार जिहड़ी है प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज अलग अलग सूबिआं ते टैरिटरीज नूं इह हक दे चुके ने। सब तो वड्डा मुनाफा जिहड़ा है उह NSW खट रहे। NSW ने अपनी स्टेट दे विच 50 बिलियन डॉलर दी इन्वेस्टमेंट जिहड़ी है उह मना लई है। सब तो ज्यादा डेटा सेंटर इत्थे बने ने, पर पटीशनां भी दायर हो चुकियां ने। हॉर्सली पार्क दे विच जिहड़ा एक नैक्सट DC दा डेटा सेंटर बन रहे उस नूं लैके हुण तक 500 दे करीब सिग्नेचर हो चुके ने। फेयरफील्ड दे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक होर टीनेजर जागरूक लड़के दी तरफ तों इह पटीशन दायर कीती गई है। इस तों इलावा लेनकोव दे विच बन रहा जिहड़ा गुडमैन प्रोजेक्ट है मार्स रोड दे उत्ते उसके खिलाफ एक पटीशन शुरू कीती गई है। 3,000 हस्ताखर उहदे ते हो चुके ने। कोगरा गोल्फ कोर्स दे कोल बनन वाले डेटा सेंटर दे खिलाफ 950 लोगों ने हस्ताखर किए ने। हंटर वैली दे विच जिहड़ा कुरी-कुरी दे अंदर एयर ट्रंक दा डेटा सेंटर बन रहा उसके खिलाफ 450 लोगों ने हस्ताखर किए ने। ठीक इसे तरीके दे नाल विक्टोरिया ने 25 बिलियन डॉलर दे AI डेटा सेंटर दा निर्माण अपने सूबे दे विच करवाउण दे लई डील फाइनल कर ली है। इस दे विच वेस्ट फुटस्क्रे दे विच जिहड़ा नैक्सट DC दा डेटा सेंटर है काफी बड़ा डेटा सेंटर यह बन रहा है। इस नूं लैके 3900 दे करीब लोग हुण तक जिहड़े हस्ताखर कर चुके ने। वैसे इन्हां इलाकियां दे विच जदों तुसीं जाओगे ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੈਸਟਫੁੱਟ ਸਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਟਸਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕੁਏਅਰ DC ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ 1700 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਮੋਰਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 4700 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਲੰਟਨ ਮੈਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੌਡ ਮੀਡੋਜ਼ ਕੈਂਬਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਡ ਨੌਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਓ ਜੀਲੋਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 850 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਪੈਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਪਰ ਰਿਨਿਊਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਰੇ ਡੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵੈਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਸਮੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਰ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ

व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडीनोंग। ज्वेलर्स परोसे दी निशानी। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनीना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनीना विच।

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।

0: ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਦੇ ਫਿਰ ਦੋ ਦੋ ਮਾਰੂਗਾ
1: ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੰਗੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡੋ ਫੋਨ ਚੱਕੋ ਕਾਲ ਕਰੋ ਵੀਵਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ हर कदम तुहाडे नाल।
2: सोना चाहिदा,
3: भरोसा चाहिदा,
2: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी तुहाडे ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ वी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
4: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मैनु भी दस दे सीक्रेट।
5: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दुध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
4: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: 1874।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
0: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
0: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 पे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
2: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच,
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सन विच वी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर।

0: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लेंडिंग।
1: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
2: हुण टेंशन छड्डो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुण सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान, बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
3: फिर लवाइए किथों?
2: सन करंट वालिया कोलों, 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
4: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
5: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिनां विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक, ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स, अपने बिजनेस नू चमकाओ। कॉल 1300-151616, quicksignage.com.au।
6: सोना चाहिदा,
7: भरोसा चाहिदा,
6: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी, पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत, कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
8: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस, अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
9: किचन का स्टाइल डल लगता, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन, पाडे घर नु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
10: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं, डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
11: अपने सपनों का घर बनाए रिवर वॉक में, जो है डेवलपमेंट विक्टोरिया का एक प्रोजेक्ट, वेर वी के दिल में स्थित इस जीवंत और स्थापित कम्युनिटी का हिस्सा बने। शॉपिंग, ट्रांसपोर्ट और पार्कलैंड के पास आपका नया घर, रिवर वॉक प्राइमरी स्कूल और एस्पायर अर्ली एजुकेशन एंड किंडरगार्टन से सिर्फ पैदल दूरी पर है। यहाँ अलग अलग प्लॉट साइज उपलब्ध है, केवल 5% डिपॉजिट के साथ खरीदे। अधिक जानकारी और अपनी रुचि दर्ज करने के लिए आज ही विजिट करें myriverwalk.com.au।
12: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
13: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा, न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
12: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: रेडियो। हाँ जी 1674।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 पे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ली एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 और पैरामेटा सिडनी अति न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
4: दिस स्टेशन इज नाउ द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स।
0: रेडियो हाजी 16748।

0: जे मॉन्टी एंटरटेनर करने लगे
1: नहीं 12 सितंबर
0: हाँ 12 सितंबर तो शुरू हो रहा जी। सो सवेरे 9:30 तो शाम 5:30 तक होंगे कॉमनवेल्थ पार्क के कैनबरा के अंदर। तो आओ जाओ जाके आओ घूम के आओ। बाकी रीजनल फैसटिवल भी जेडे ने वह सितंबर च शुरू होने, इनफैक्ट सितंबर के एंड च जो स्कूल हॉलीडेज शुरू होनी ने मेरे ख्याल 25-26 सितंबर तो
1: शायद
0: उदो तो फिर रीजनल एरियाज जिन्हें है एन एस डबल्यू के ऑरेंज देख लो, डबो देख लो, पार्क्स देख लो, उत्थे दे रीजनल फेस्टिवल जिहड़े ने स्प्रिंग दे ओह शुरू हो जांदे ने इन्हां दिनां च।
1: अच्छा जी,
0: ओह जे छुट्टियां दे विच तुसीं उत्थे जांदे हो तां तुहानूं रीजनल फेस्टिवल्स वी इंजॉय करन दा मौका मिलेगा। पेंडू इलाकियां दे जिहड़े फेस्टिवल्स हैगे ने ओह अलग-अलग तरहां दे हुंदे ने।
1: वेरी गुड, देखणे चाहीदे सानूं ओह वी भाजी। पिंड च जा के पिंड दी याद आंदी है फिर होर की है।
0: विक्टोरिया चो थोड़े जे वकरे आ पिंड थोड़े जे आस्ट्रेलियन पिंड ने पार्क्स दा एरिया हो गया या अपना उधर दा हो गया ऑरेंज दा लिथगो दा हो गया है ना।
1: अच्छा अच्छा,
0: डबो दा फिर थोड़े जे इंडियंस हैगे ने उत्थे, पर आ जिहड़े टिपिकल गोरियां दे एरियाज हैगे ने इत्थे नहीं।
1: टमाटर
0: लैके आने खाने शाम नूं असीं टमाटर दा जूस पीने होने जी। ओके ते एक मिनट आपां टाइम दे लई। हां, जान तों पहले एक आखरी खबर दस दिए तुहानूं।
1: ओहो,
0: अमेरिका दे विच एक जनानी ने अपने गधे की मालकन है, गधे की तस्वीर अपनी टी शर्ट के उत्ते छापी है क्योंकि उसके गधे ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया।
1: लत्तियां मारती ज्यादा हिंडके लापया।
0: पेंसिल्वेनिया अमेरिका की स्टेट हैगी है, जिहड़ा गधा है गिनीज बुक ऑफ ओदी मालकन है जेनिफर जी, ओदे गधे का नाम है हैंक। टॉम हैंक नहीं, हैंक
1: हैंक
0: हैंक ने रिकॉर्ड बनाया। ओदे कन 17 इंच लंबे ने।
1: ओके,
0: ते ओ तो पिछला जिहड़ा गधा सीगा जिदे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड च सीगे ओदे नालों 1.5 इंच लंबे हैगे ने।
1: वाह जी वाह।
0: सो इहदा इह रिकॉर्ड बन गया ते उहने हुण अपने गधे दे कन्नां लई इक फेस दी इक तस्वीर अपनी टी शर्ट ते छाप के पूरे अमेरिका च घूमदी है कि देखो मेरा गधा,
1: मेरा गधा है, मेरा गधा। जिदा कहते ना तेरा मुंडा ते गधा ओ मेरा गधा है। हां देखो गधे नूं इदां आपां उत्ते चढ़दा है।
0: देखो जी गधे ने रिकॉर्ड बना लिया।
1: एनिमल इज एनिमल यार, गधे इदां थोड़ी है। आपां एवें अपने मुंडे नूं कहते ने तू गधा तू आ। देखो यार
0: रिकॉर्ड भी बना
1: ओदा भी गिनीज बुक विच रिकॉर्ड
0: है। कन्न खिचण लग जाओ अपने लिया तेरा गिनीज बुक च नाम लिया।
1: सही गल।
0: चलो फिर आप लइए इजाजत भाजी।
1: चलो जी हाँ जी, फिर मिलते हैं नैक्सट वैनसडे फिर। अपना खबर बड़ी बेकार लैके ते मैं जी मनतेज सिंह मोंटी इंटरटेनर ते मेरे नाल ने कपिल गौतम, कपिल भाजी ते सानू दियो इजाजत। सत श्री अकाल,
0: टाटा
1: टाटा, बाय बाय,
0: ज्यों
1: ज्यों बराबर ज्यों। आहा म्यूजिक बहुत कैंट जी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
3: हां जी रेडियो।

0: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।
1: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी, हां जी रे।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक माल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। इंश्योरेंस शर्ता लागू।
1: हाँ जी हाँ जी ओए हाँ जी
2: रेडियो
3: बड़ी बढ़िया लगी मेनू गल तेरी।

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: हां जी हां जी ओए हां जी हां जी
2: हां जी रेडियो

0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की होया
0: थे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
0: हर कदम तो आडे नाल।
2: हां जी हां जी।

व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना, 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट, डैंडीनोंग। ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी हां जी, ओए

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।

वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे ऐसी।

0: लैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो विजिट goldleafdairy.com।
1: हेलो हेलो हेलो हेलो, नशा पता तो हरेक करता है, पर जब बंदे दी घरवाली नू पता लगता है, पता तो उदो लगता है कि मैं एक बेचारे अमली दी घरवाली दुख सुनाउंदी।

सुनै सेख पीर पातशाह, सुनै अंधे पावे राह, सुनै हाथ होवे असगा, नानक भगतां सदा विगा, सुनै दुख पाप का नास, मन्ने की गत कई न जाए, जे को

जाने मन कोय, मनै सुरत होवे मन बुद्ध, मनै सगल भवन की सुध, मनै मोचो टाने खा, मनै जाम कै साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय, मनै

ना पाए जाए। ए अंत न जाने कोय, बहुता कहिया बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, एवड ऊंचा होवे कोय तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते मंगे जोत अपार, केत्या गंत नहीं विचार, केते खप टुटे वेकार, केते लैले मुकर पाहे, केते मूर्ख खाई खाए, केतिया दुख भूख सदमार, ए भेदात तेरी दातार, बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए, जे को खाएक आखन पाए, ओ जाने।

आसन लोए लोए पंडार, जो कुछ पाया सो एक कावार, कर कर वेखै सिर जनहार, नानक सचे की साची कार, आदेश तसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एक दूजी पौ लख होए लख वीस, लख लख गेड़ा आखिया, एक नाम जगदीश, ए तरह पत पवड़िया, चढ़िया होए अकीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस, नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ै ठीस, आखन जोर चुपै नहीं जोर, जोर न मंग दे न जोर, जोर न जीवन मर न जोर, जोर न राज माल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थिति वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिन के नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापे जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का खो करम, केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते ब्रह्मे कार्त कड़िया, रूप रंग के वेश, केतिया करम भूमि मेर, केते केते तूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवेश, केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद, केतिया खानी, केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेव केते, नानक अंतनांत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद मनोद कोट आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै कार्त कड़ी है बहुत अनूप, कां किया गल्ला कथिया ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, तिथै कड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथै कड़ी है सुरा सिदा की सुध, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोध महामलसूर, तिन मैं राम रिया भरपूर, तिथै सीतो सीता मैं मामा, तां के रूप न कथने जाए, ना ओ मरे ना ठागे जाए, जिन कह राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसे के लोए, करे आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसे नंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै

अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परमंगी परमाते समस्ती प्रभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सवरंग परम रूपे नमो जोग जोगे सवरंग परम सिद्धे नमो राज राजे सवरंग परम बिरदे नमो शस्त्रपाने नमो अस्त्रवाने नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता वेखी अवरमी अभोगी अभुक्ते नमो जोग जोगे सवरंग परम जुगते नमो नित नारायण कुकुर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तं स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्वमुख प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बिरद करदा अधो उर्द अर्दंग अगा उग हरता परंग परम परमेश्वरंग प्रोच पालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयारंग अछेती अपेदी अनामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्तस्ततामंग तेरा जोर चातुरी छंद जलय हैं थलय हैं अभीत हैं अभय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अवेश हैं प्रियंग प्रछंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ति निदाने नमस्तं निनाथे नमस्तं परमाते नमस्तं अगंजे नमस्तं अभंजे नमस्तं अकाले नमस्तं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साय नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो सर्वतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वमंजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वोत्कृष्टं नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तं प्रसजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं पनासी सदा सर्वदारिद सिद्धं निवासी चार परिचान तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे आलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आदि रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रमान देव अभेद आद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपनकाल जत तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद से देश अरना पेश जाकर रूप रेख न राग जात्र तत्र दिशा विशा हो फैलो न राग नाम काम बहिन पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानताए एक मूर्त अनेक दर्शन किन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेद हरक तेव रूप रंग न जात पासो जानी कह जेव तात मात न जात जाकर जन्म मर महीन चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्त्यो सुजंबव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेक अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्व गंजन दुष्ट पंजन मुकद्दा एकाम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपे सर्व शास्त्र न जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पाकत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवे ही वो चित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार मैं माया पार आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास

कालानकान अनुभूत अंग अभाव अंगतमितापार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलक्ष आदि श्रेतरम सर्वां परनांडिये अंडंड भांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभेज वेश के आगाज कर्म के आभंज भरम के आभेज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्ण के बेपूत कर्ण के राजम प्रवाह के धर्म तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चक्रंग बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा के रही में रहा के के पाक बे अब है के गैबल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज ग्रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानिय के सर्वत्र दानिय के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पैसे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देश के सर्वत्र पैसा के सर्वत्र काल के सर्वत्र पाल के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पैसा के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानिय के सर्वत्र जापिया के सर्वत्र थापिया के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहेब कलाम के हुसन वजू है तमामल रजू है हमेशा सलाम सली खुदा में गनी बुल शिकस्ते गरीब उल परस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरकत स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रवाह है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आदरूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिभादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सुसर्वान रागे तिरपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथ्वी परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंद है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है अनचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जुक्ता सर्वंग मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नर्क नासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंग भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साक शरीक है अमित अमिक है सदैव परवाह है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है के
ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੇਸ਼ਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਹੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਰਹੰਦ ਹੈ, ਕਰੀਮੁਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਰਾਜ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਰੀਫੁਲ ਸ਼ਕਨ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਲ ਫਕਨ ਹੈ, ਕਲੰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਅਗੰਜਲ ਗਨੀਮ ਹੈ, ਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਜੁਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਬਿਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਰ ਗਵਨ ਹੈ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਲ ਰਵਨ ਹੈ, ਤਮਾਮਲ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਪਰੰਗ ਪਰੰਗ ਈਸ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਅਦੇਸਲ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭੇਸਲ ਅਭੇਖ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਅਮੀ ਕੁਲੁਮਾ ਹੈ, ਕਰੀਮਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਗਜੁਰ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕ੍ਰਮਿਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ,

गुणगन मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मुन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मुन मन प्रगास गुणगन प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनपौ अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खल।

अंठन अबार आडीठ तरम अत ठीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना शांतो प्रसाद करना ले आयार काले है कलखंडर है मैं मंडर है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जाके करण है मनमानी है जगजानी है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपात्व है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृता है तरणीतृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजभाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलकायक है विश्वम्भर है करुणालय है निर्मनायक है सर्वपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रवतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा है सर्वात्मा है आत्म बस है जस के जस है प्रजांग प्रया छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो भांग भंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक श्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख पख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमूनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मं अभर्मं अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रणासे अगंजन अनामे सुमस्तल निवासे निर्कामं बभूते सुमस्तं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुतर्मं प्रभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियं करियं करीमं रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते। तो प्रसाद सोइए सराव समूह सिदान के देख फिरो कर जोग जति के सूर सुरार धन शुद्ध सुधायक सन समूह अवनिवती के सारी देश को देख रहे मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते में तंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कुद पौन के गौन को जात निवारे पारी प्रजान कपूर बली बन्याव सीत न जात बिचारे इते पै तो कांपे पुपुत अंध को नांगे पाए बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मृदंग निगारे गुजत गुण गजान के सुंदर हंसत है हजराज हजारे पूत पवेख पवान के पुपुत कौन गुने नी जात बिचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिख है पौन हार जति जब तार सब विचार हजार को देख है श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख है शुद्ध सुबा दुरंत दुबा सुसाज सनह दुर्जान।

बड़े बड़े यार अवतार इसार की धार बिछैया तोर देश बुलंद बवासन माते के जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोरन हार सुबातन ही चकचार लवैया साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव फिनन निसाचर पोत पवेख पवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रताप अनबार जय तुन पापन के बो पुंज खपेंगे सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सबै अब लोग जपेंगे मानव इंद्र गजिंद निरातम जोन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वम्बर साज भरेंगे ब्रह्म हेश्वर विष्णु सचिपत अंत बसे जम्फात भरेंगे जे नर श्रीपत।

0: नहात फिरो लिए सात समुद्रन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहूं ले पायन पुत्रो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुट सबे तुम कावो आप हाथ दे मोय बचावो सुखी वसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिय सब बैरन को आज संगरिय पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तुजो करियो रक्षा राख।

कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत टीटी ते कुंचर अस्थूला सा पर कृपा दृष्ट कर फूला संतम दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब आकर्ष करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब थारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही तेरत निरालम जानत बेद भेद अल आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड।

महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंतन पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तो तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पूपा, अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रज दीनी, कहो फू राजा है बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा, सगरी सृष्टि दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव, आवरक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रन काता, जे आज तो तब सरनी परे, तिन के दुष्ट दुख्त है मरे, पुरख जवन पाग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे, जो कल को एक बार तिहाए है, ताके काल निकट नहीं आए है, रच्छा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे न हर हो।

जय आप जी धन सभी संतान पिता श्री गुरु रामदास महाराज जी दे महान बख्शिशमई स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी अते गुरुद्वारा मंजी साहब दीवान स्थान विखे हाजरियां भर रहे हो। गुरु प्यारी साहब संत जी

आगे सुख पावे। दशमेश पिता धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने पासों जिस वक्त भाई जोगा सिंह जो कि पहला सेवा दे हाजिर होया सी आग्या लै के

प्रभु न सिमरियो राम। बड़ा पवित्र जीवन है पर समझाउण वास्ते बचन उचारदे हन, मैं कदे राम सिमरिया ही नहीं, प्रभु दा नाम जपिया ही नहीं। रोम रोम दे विच नाम है, स्वास गिरास दे विच नाम है, पर आखदे हन कि मैं कदे नाम जपिया ही नहीं, मेरे वर्गा कोई माड़ा ही नहीं, ये समझाउंदे हन। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी दे बचन आपां पढ़दे हां, उन्होंने भी अवगुणा दा जिक्र कीता है एक सवैये दे विच, वारां दे विच। हो अपराधी गुनागार हो बेमुख मंदा, सारी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी अपनी कलम दे नाल लिखण वाले, इन्नी पवित्र आत्मा सतगुरां दी बख्शिश दे पात्र, जिन्हां नूं सिख जगत दे वेद व्यास होण दा माण प्राप्त है, पर बेनती किवें करदे हन, कहिंदे हो अपराधी गुनाहगार हो बेमुख मंदा, चोर यार जुआर हो पर घर जो हंदा, निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा, विश्वास घाती किरत घन मैं को न रखंदा, सिमर मरीदा ढाडिया सतगुर बख्शंदा। महाराज बड़े अवगुण हन, अवगुणा दे नाल भरे होए हां। छेवें पातशाह दा वी जीवन विच प्रसंग आउंदे हन, पहला दास पहला बचन पूरा करे। जद भाई जोगा सिंह दे मन दे विच हंकार आ गया ना, क्योंकि जद आपां गहराई दे नाल देखिए फिर सानू दिखाई पवेगा इत्थे गुरु नानक दे घर विच एक दो एक चढ़ंदियां हन, चढ़दे तो चढ़दे हन, हंकार आ गया। उस वक्त ऐसी प्रेरणा हुई, हुशियारपुर वेसवा दे दरवाजे दे उपर जा पहुंचे, अशक्ति हो गई। जद हौमे आ जांदी है, हंकार आ जांदा है, लोभ विच अशक्ति हो जाएगी, काम विच अशक्ति हो जाएगी, मोह विच अशक्ति हो जाएगी, जिवें महाराज जी फरमाते हैं डी हर न्यायी मोए फाकी हो रे। जिवें कहिंदे मच्छी कुंडी दे विच फस जांदी है ना, फिर वह गहराइयां भुल जांदी है, इस तरह अवगुणा दे विच मोह आदिक दे विच मनुख फिर फस जांदा है, फिर धर्म की की गहराई है, रूहानियत की की गहराई है, इहनूं पता नहीं चलदा। इस करके जिन्ना चिर तक उथले उथले गुण हन, अजे गहराई विच नहीं उतरे हन, बेनती करते रहना चाहिदा है, तरले मारते रहना चाहिदा है, महाराज कृपा करो बचा लो, अपनी माया नूं तुसी संकोच सकदे हो। इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण बिसारे, किंचित प्रीत न उपजै जन को जन कहां करे बिचारे। साड़े विच समर्था नहीं तेरी माया नूं संकोच दई है। साध संगत जी जदों फिर कोई गुरु ने एक बारी कह देंदा है ना, हे गुरु मैं तेरे जोगा, गुरु फिर उहदे जोगा हो जांदा है, भावे इस जन्म विच उधार कर दवे भावे अगले जन्म विच उधार कर दवे, गुरु जिहदी एक बारी बाह फड़ लैंदा है फिर छड्डदा नहीं, क्योंकि बच्चा प्यो दी बाह फड़े छुट सकदी है, प्यो बच्चे दी बाह फड़ लवे उह नहीं छड्डदा, फिर मेले विच गुआचण नहीं देंदा है, दुनिया दे मेले विच गुरु गुआचण नहीं देंदा,
फिर बांह फड़ के रखता है। कलगी वाले पातशाह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सारी रात वेसवा दे दरवाजे विच पहरा दिता, सिख दा जीवन भ्रिष्ट नहीं होण दिता। जद पहुंचे हन जाके महाराज जी जान के नेत्र बंद करदे हन, पुछिया भाई जोगा सिंह जी ने, आखण लगे पहरा दिता है तां असीं उगला रहे हां। भाई जोगा सिंह आखण लगे कौन है जिन्हें तुहाडे कोलों पहरा दवाया। सचे पातशाह आखण लगे जोगा सिंह तू ही है। फिर साध संगत जी भुल गलती की माफी मंगी तो कहण तो मुराद है कि मनुख दे अंदर पहला होमे आउंदी है, होमे बंदे नूं पागल कर देंदी है, जो महाराज फरमा रहे हैं गर्भ गहलड़ो। गहलड़ो का भाव है पागल। फिर नहीं पता चलता भी की सही है की गलत है। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज छेवें पातशाह संगतां नूं उपदेश देंदे हन, सतगुरां दे इतिहास विच बचन आउंदे हन। महाराज आखण लगे संगत जी सिमरन करना है, कीर्तन करना है, कथा सुननी करनी है, संगत करनी है, सेवा करनी है। बड़े गुणा दा महाराज ने जिक्र किया। आखिर विच आखण लगे भी ये सारा कुछ करके भई होमे नहीं करने। बड़ा सावधानता दे नाल धन बचाया जाता है। महाराज आखण लगे जप तप करके जे होमे करिए, जिवें नवे पातशाह जी दे भी आपां वचन पढ़दे आ धन गुरु तेग बहादुर साहिब सचे पातशाह जी दे, तीर्थ बरत अर दान कर मन में धरै गुमान, नानक नेफल जात ते ज्यों कुंचर इशनान। जे हाथी नहा धो के फिर चिकड़ दे नाल लिबड़ जांदा है, इस तरह मनुख चंगे कर्म करके जद हंकार करदा है फिर औगणा दे नाल लिबड़ जांदा है। महाराज जी ने एक उदाहरण भी दिती। आखण लगे एक पिंड दे विच खूह दे विच बिल्ली डिग पई, खूह दा पानी जिहड़ा सी ओह बदबूदार हो गया। सूरज प्रकाश दे विच बचन लिखे हुए हन। किसी सियाने ने आके आखिया कि बिल्ली नूं बाहर कढ के 100 डोल पानी दा बाहर कढ के रोड़ दिओ, पानी दी बदबू खत्म हो जावेगी, साफ हो जावेगा। पिंड वाले पहली गल तां भुल गए, 100 डोल पानी दा कढ के डोल दिता। जद फिर पानी लगे पीण लगे फिर बदबूदार गंदा। आखण लगे सानू सही नहीं सलाह दिती, बंदे दे विच नुक्स है। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ 100 ਡੋਲ ਕੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਡੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋੜ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋਗੇ। ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਔਗਣ ਵੀ ਬਣੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਕ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਅੱਕ ਟਿੱਡਾ, ਅੱਕ ਡਾਲੀ ਬੈ ਖਾਏ, ਖਸਮ ਭਾਵੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੇ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ ਖੁਦਾਏ।

इस तरह की रट लगा के रखता है। सहस खटे लख कोठ धावे, तृप्त न आवे, माया पाछा पावे। अनक भोग बिखिया के करे, न तृप्त आवे, खप खप मरे। बिना संतोख नहीं को राजा, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजा। नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ भागी किसे प्राप्त होए। जो पावक ईदन नहीं त्रापे, बिन हर कहां अगाई। जिवे आग दे विच बालन पाई जाओ, ओदी भुख नहीं मिटदी, होर वधदी है। इस तरह तृष्णा जिहड़ी है बुझदी नहीं, तृष्णा विरले ही की बुझी है, किसी विरले दी बुझदी है। कोट जोरे लाख करोरे, मन न होरे, परे परे ही को लुझी है। होर चाहिदा है, होर चाहिदा है। सच्चे पातशाह जी फरमाते हैं, घनो घनो घनो सद लोड़ है। ये हमेशा लोड़दा रहिंदा है, चाहुंदा रहिंदा है। मनुख होर चाहिदा है, होर चाहिदा है। पर कहिंदे मिलदा मनुख नूं ओना ही है जिन्ना इहदे भागां दे विच लिखिया होया हुंदा है। इहदे सोचण दे नाल की हो जाएगा? सोचण नाल कुछ नहीं हुंदा। हाँ, एक दूसरा तरीका है, जिहड़े बेईमानी नाल, हेरा फेरी नाल, भ्रिष्टाचार नाल धन इकट्ठा कर लैंदे हन। ओह धन उहनां दे जीवन वास्ते सुखदाई नहीं हुंदा है। इह जहर है, निराई दुखदाई है। जो भागां दे हिसाब दे नाल चलदे हन, भागां नूं वड्डिया कीतिया जा सकदा है, भागा नूं छोटा भी किया जा सकता है। जिवें जिवें मनुख चंगे कर्म करता है, वे भाग वड्डे हुंदे जांदे हन। बाबा रविदास जी दे वचन हन, रिद्ध सिद्ध जाको फिरी, तब काहू सिओ क्या काज। तेरे कहने की गत क्या का, मैं बोलत ही बड़ लाज। रिधिया सिधिया निधिया पिछे पिछे घूम रही हन, हुण किसे दिन की गरज रह गई। इन्ना नाम जप किया, इन्ना नाम जप किया, भाग विशाल हो गए।

प्रकार भावे साधु सर्वगुण संपन्न होंदे हन साध नाम निर्मल ताके कर्म पर किसी साधु विच कोई गुण ज्यादा प्रकाशित हुंदा है बाकी गुण उन्हां दे विच गुप्त हुंदे हन

गुरु प्यारी साहब संगत जी तुखारी राग दे विच ए धन सोढ़ी सुल्तान पिता श्री गुरु रामदास महाराज सचे पातशाह जी दी मुबारक रसना तो उचारण कीते हुए शब्द हन। मानो के ए एक इतिहास भी है। कई लोग आखदे हन भी नहीं जी ए ज्ञानी कई साखियां ही सुनाई जांदे हन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच साखियां लिखियां हन। जिस वक्त धन धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी तीर्थां नूं पवित्र करन वास्ते तुरे, तीर्थां दा रटन करन वास्ते तुरे, आपां पढ़दे आ शब्द जन चर रज मुख माथै लागी आसा पूर्ण अनंत तरंगा जन पार ब्रह्म जाकी निर्मल महिमा जन के चरण तीर्थ कोट गंगा। सत पुरशां दी चरणां दी धूड़ दी बराबरी करोड़ां गंगा भी नहीं कर सकदियां हन, इन्नी पवित्र। तीर्थां नूं पवित्र करन वास्ते तुरे धन गुरु अमरदास महाराज जी, उहदा जिक्र कर रहे हन। भावें पहले जीवन दे विच महाराज जी जांदे रहे, इतिहास के मुताबिक 19 वारी गंगा ते गए सन महाराज जी इशनान करन वास्ते, पर साध संगत जी मन नूं संतुष्टि ना होई। एक दो घटनावां वापरदियां हन। एक तां एक व्यक्ति मिलिया जिन्हें आख्या वी तुहाडा गुरु कौन है। सचे पातशाह आखण लगे गुरु मैं अजे तक कोई धारण नहीं कीता। उन्हें आख्या मेरा तां जीवन ही सारा जपता भी चलिया गया, नगुरे दे दर्शन करने। दूसरा जिवें एक दुर्गा दास नाम दे पंडित ने महाराज जी चरणा वाल देख के, चरणा दा पदम देख के आख्या सी भी तुसीं बहुत वड्डी रूहानियत दी पदवी दे उपर बैठोगे, उदों तुहाडे कोल आके मंगांगा जब तुसीं सिंघासन ते बैठे होवोगे। जब महाराज जी निमाणियां दे मान निताणे दे तां न्योटियां दी ओट बने, इन्हें आके बेनती कीती। सचे पातशाह आखण लगे भी लोक दे सुख चाहीदे हन के परलोक दे। इन्हें बेनती कीती, भाई संतोख सिंह जी ने बड़ी खूबसूरती दे नाल सूरज प्रकाश दे विच अंकित कीते हन। कहिंदे नाम दे धन दे ना जन कौ, धन बिना जन जग ना सुहावै। महाराज जेकर इकला नाम ही देंदे हो, संसारी धन नहीं देंदे हो, तां वी समाज दे विच बंदे दा मान सन्मान नहीं। धन तां चाहीदा है। दूसरी बेनती की थी जो धन दे नाम दे ना जन को, नाम बिना जन जमपुर जावै। महाराज जो दुनियावी धन देंदे हो, नाम नहीं देंदे हो, तो नाम तो बगैर भावे जिन्ना मर्जी कोठियां कारां लखां दा मालक होवे, जमां दे वास विच पैणा पैंदा है। कुछ नाल थोड़ी नाल लै जाना है बंदे ने, सारा कुछ इत्थे रह जाना है ना। आखिया अमरदास तेजो के नंदन, दोनों मार्ग पंथ चलावै। हे बाबा तेज भान दे पुत्र धन गुरु अमरदास महाराज जी, जे त्रुटे हो ता नाम दा धन वी दिओ, ता दुनियादारी दा धन वी दिओ। धन गुरु अमरदास महाराज जी पहला 19 वार गए हन, पर दोबारा महाराज सचे पातशाह जी, जिवें धन गुरु नानक साहब सचे पातशाह जी भी जांदे रहे, जिथे बहुत सारे लोकां दा इकट्ठ होवे, इको समय दे विच बहुत सारे नूं सिक्ख्या दित्ती जा सके। इसे तरह तीर्थ उद्दम सतगुर किया सब लोक उदरण अर्था, यह पंक्ति आउंदी है। पहली पंक्ति दे विच पहले शब्द दे विच महाराज ने दस्या है कि महाराज सचे पातशाह जी कुरुक्षेत्र विखे गए, जो अंबाले दे नजदीक है। हुण दूसरे शब्द दे विच सचे पातशाह जी धन गुरु रामदास जी फरमा रहे हन
ਦੁਤੀਆ ਜਮਨ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਮਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰ ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਕੀਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ

नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास। केवल एक दिन शेष रह गया है अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव को। आप सभी ने पिछले दिनों भगवान की लीलाओं का श्रवण किया और कानों के माध्यम से हर लीला का पुण्य दर्शन। अभी तक हमने सुना कि कैसे कंस को टेंशन में डालकर हमारे नन्हे कृष्ण कन्हैया पहुंच गए गोकुल नंद महाराज जी के भवन में, जहां इधर मथुरा की कारागार में कंस को चिंता ने घेर लिया था, उधर गोकुल में आनंद की लहर दौड़ चुकी थी। जरा सोचिए, जिस भगवान को पाने के लिए योगी वर्षों तक ध्यान करते हैं, जिस भगवान के चरणों की सेवा के लिए लक्ष्मी जी भी ललायत रहती हैं, वही भगवान आज गोकुल में एक नन्हे से बालक बनकर यशोदा मैया के साथ में लेटे हैं। यशोदा मैया के लिए तो वे बस उनका लल्ला है, नंद बाबा के लिए उनका पुत्र, गोपियों के लिए उनके प्राणों से भी प्यारे कृष्ण, और गोकुल के लिए नंदलाल। यही भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला है, जिसका मिलकर हम करेंगे श्रवण इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: आप सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।
1: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिना को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स। यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।

पुण्य दर्शन में आप हैं अपने दास के साथ। तो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, पापियों को दुष्टों को उनके अंत तक पहुंचाने के लिए, उनका विनाश करने के लिए इस धरती की पुकार पर प्रकट हो गए भगवान श्री कृष्ण, जो फिलहाल तो गोकुल में यशोदा माता के साथ लेटे हुए हैं और माता यशोदा प्रस्तुति के कारण गहरी निंद्रा में थी। भगवान की प्लानिंग के अनुसार जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो सुबह होते ही गोकुल में खबर फैल गई, नंद बाबा के घर पुत्र हुआ है। ये पुत्र कोई सामान्य बालक थोड़ा ना है। चारों ओर गोकुल में उत्साह और उत्सव का वातावरण बन गया, चारों ओर आनंद ही आनंद फैल गया। बस फिर क्या था, गोप गवाल अपने घरों से निकल पड़े और एक दूसरे को बोलने लगे, नंद के आनंद भयो। गोकुल में ऐसा उत्सव होने वाला था जिसकी बराबरी संसार का कोई उत्सव नहीं कर सकता, क्योंकि नंद बाबा सबसे अधिक प्रसन्न थे। जो भी उनके सामने आता उसे उपहारों से, सोने के सिक्कों से भर देते। लल्ला के जन्म पर नंद उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें क्या क्या हुआ अद्भुत, जिसे सुनकर आप भी आनंदित हो उठेंगे। बताता हूं थोड़ी देर में, मैं यूं गया यूं आया हूं।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अभी तो नामकरण भी नहीं हुआ लल्ला का। गोपियां सज धज कर नंद बाबा के घर पहुंचने लगी। चारों ओर मंगल गीत गाए जाने लगे, वाद्य बजने लगे, ब्राह्मणों को बुलाया गया, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया गया। ब्राह्मणों ने नवजात बालक के लिए मंगल कामना और आशीर्वाद दिए और नंद बाबा, उनका आनंद शब्दों में समा ही नहीं सकता। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जो फल सत्य युग में भगवान के ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में भगवान की पूजा से प्राप्त होता था, वही फल भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए जन्माष्टमी केवल एक उत्सव देखने का अवसर नहीं है, यह अवसर है कृष्ण को सुनने का, कृष्ण का नाम लेने का, कृष्ण की कथा में मन लगाने का। तो कल आने वाली जन्माष्टमी पर केवल ये ना कहें कि कृष्ण आज से 5000 वर्ष पहले जन्मे थे, बल्कि यह प्रार्थना कीजिए कि हे कृष्ण, जैसे आप नंद बाबा और यशोदा मैया के जीवन में प्रकट हुए हैं, वैसे ही मेरे हृदय में भी अपने पवित्र नाम और अपनी कथा के माध्यम से प्रकट हो जाइए। और फिर पूरे प्रेम से बोलिए, नंद में भी अपने पवित्र नाम और अपनी कथा के माध्यम से प्रकट हो जाइए। और फिर पूरे प्रेम से बोलिए, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आप इस आनंद का आनंद लीजिए और मुझे दीजिए आज्ञा, कल मिलकर मनाएंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व यहीं पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास, नमस्कार।

0: आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
1: आप सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।

0: मेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नु जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
0: याद रखो 9077-9733।
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
0: हर कदम तुहाडे नाल।
2: चलदी दा नाम गड्डी, आ ते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390866655 और विजिट tirefors.com.au।
3: अपने सपनों का घर बनाए रिवर वॉक में, जो है डेवलपमेंट विक्टोरिया का एक प्रोजेक्ट। वैरवी के दिल में स्थित इस जीवंत और स्थापित कम्युनिटी का हिस्सा बने। शॉपिंग, ट्रांसपोर्ट और पार्कलैंड के पास आपका नया घर। रिवर वॉक प्राइमरी स्कूल और एस्पायर अर्ली एजुकेशन एंड किंडरगार्टन से सिर्फ पैदल दूरी पर है। यहाँ अलग अलग प्लॉट साइज उपलब्ध है, केवल 5% डिपॉजिट के साथ खरीदे। अधिक जानकारी और अपनी रुचि दर्ज करने के लिए आज ही विजिट करें myriverwalk.com.au।
2: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन। हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 डॉनस्टेल स्ट्रीट डेंडीनोंग। ज्वेलर्स परोसे दी निशानी।
4: किचन का स्टाइल डर लगता, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, पार्टे करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन। If you can...

चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुग निना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी ले नंबर लिख लो 0403-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
2: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
3: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
2: फिर लवाइए कित्थों?
3: सन करंट वालिया कोलों। 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
4: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246।

0: उसी योगना जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596। गरेवाल वीजा solutions.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
1: एक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आप बच्चों के जीवन को आकार दे सकते हैं। आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। अपने करियर को संवारें। अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत।
2: सोना चाहिदा,
3: परोसा चाहिदा,
2: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ वी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493536042।
4: किथे वज गई तेरी गड्डी?
5: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालिया नू, लीगल वालिया नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवे?
4: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालिया ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथोराइज्ड काम अते। फ्री लीगल एडवाइस लाई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
6: एक अजिही दुनिया जिथे जिराफ हुण सब तो उच्चे जानवर नहीं है। जूज विक्टोरिया मान नाल चिड़ियाघर विच डायनासोर्स नूं पेश करदा है अपने सारे मनपसंद जानवरां दे विच। 3 चिड़ियाघरां विच 60 तो वध असली आकार ते डायनासोर्स दे नाल एक पुरातन इतिहासिक मुहिम लई तैयार हो। मेलबर्न चिड़ियाघर, वेरी बी ओपन रेंज चिड़ियाघर अते हिल्सविल सेंचुरी दे विलखण बाहरी वातावरण विच एनिमेट्रॉनिक जीवां नूं जिउंदे जागदे वेखो। चिड़ियाघर विखे डायनासोर्स सिर्फ सीमित समय लई हन। आज ही अपनी मुहिम दी योजना बनाओ।
2: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
7: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 तो 5

0: अरे आई वाह वाह वाह, क्या गाना, ब्यूटीफुल, मानोगे नहीं,
1: अति सुंदर
0: अति सुंदर। रेडियो हाँ जी 1674 AM ते थोड़ा प्यार भरिया स्वागत। मैं हाँ कृष्ण।